नमस्कार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। आज दिन रविवार है, शक संबद 1948, वैशाख महीने की तिथि 27, तदनुसार अंग्रेजी सन 2026 के 17 मई है। हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 तथा 46 सेकंड में हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए मैं संजुक्ता आरंभ कर रही हूँ आज की पहली सभा।

0: सभा के कार्यक्रमों को आरंभ करने से पहले जान लेते हैं देश विदेश की खबरें हिंदी समाचारों के साथ, जो बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: चार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना

0: एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज्जुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे।

दोस्तों अब आपको जानकारी देते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। भक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:10 से, 6:30 से आप सुन पाएंगे वुमेन प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत एक वार्तालाप। सीता छेत्री के साथ बातें करेंगी तृष्णा चक्रवर्ती। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार 7:00। 7:05 पर आज का दिन बच्चों पर आधारित कार्यक्रम चिल्ड्रन प्रोग्राम का समय रहेगा 7:30। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात 8:00।

8:15 पर सुन पाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। सुबह 8:30 से आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज। सुरों की रंगोली ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:40 पर। सुबह 9:00 आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुआर आंचलिक बातरी। सुबह 9:15 से आरंभ होंगे इस सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। सबसे पहले खिलमा कार्यक्रम, जिसमें लाल रिनाउमी पाइते और उनके साथियों की आवाजों में आप सुन पाएंगे भक्ति गीत। रांगखोल कार्यक्रम का समय रहेगा 9:25, जिसमें भक्ति गीत सुन पाएंगे लियन नैबुम रांगखोल और उनके साथियों के आवाजों में। 9:35 से जयंतिया कार्यक्रम में सुन पाएंगे आधुनिक गीत इबर बस्टिंग लकियांग के आवाज में। रिन्ना लालचंग चम्मा दारने और उनके साथियों के आवाजों में आधुनिक गीत सुन पाएंगे बेते कार्यक्रम में 9:45 से।

सुबह 10 बजे, 12:05, 1:05, दोपहर 2:30, 4:05 से शाम के 5 बजे तक आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2 बजे सुन पाएंगे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन प्रत्येक पंक्ति में एक साथ किया गया है। यह ध्यान रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज का भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। आरंभ करते हैं वोमेन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक वार्तालाप। सीता छेत्री के साथ बातें कर रही हैं तृष्णा चक्रवर्ती।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैं हूं आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती, और मैं लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है। नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता तुमुंग। मैंने अभी रिसेंटली डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल से 12 पास किया है। मुझे असामीज डांस का बहुत शौक है और मैं बच्चों को डांस सिखाती भी हूँ, जो मुझे बहुत खुशी देती है। डांस मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक पैशन है, जिसके थ्रू मैं अपनी इमोशंस और क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करती हूँ। मैं एक हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड पर्सन हूँ, जो हमेशा कुछ नया सीखती ही है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मैं चैलेंजेस से डरने के बजाय उन्हें फेस करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। मुझे अपने स्किल्स को और बेटर बनाना है और अपने इंटरेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग करियर में कन्वर्ट करना है। मुझे लाइफ में ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें और मैं अपने आप की एक अलग पहचान बना सकूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि कंसिस्टेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिटर्मिनेशन के साथ हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए फोकस रहती हूँ और हर दिन अपने आप का एक बेटर वर्जन बनने की तरफ काम कर रही हूँ। धन्यवाद।
0: वुमेन टाइम के बाद दोस्तों, आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मिसेस सीता छेत्री, जो एक्सटेंशन इंस्पेक्टर है कॉफ़ी बोर्ड की। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
0: जी, आप अपने बारे में विस्तार से बताइए।
2: जी, मेरा नाम है सीता छेत्री, मैं कॉफ़ी बोर्ड सेक्टर से बिलोंग करती हूँ।
0: जी
2: जी, मैं एक्सटेंशन इंस्पेक्टर पोस्ट में हूँ। मैं ये 2016 में मुझे ये जॉब मिली है, तब से मैं एक्सटेंशन इंस्पेक्टर में हूँ, ये मेरा पोस्ट है।
0: जी, आप हाफलोंग की ही रहने वाली थी?
2: जी नहीं, मैं बेसिकली मैं डिफू से हूँ, मेरा स्कूलिंग भी डिफू से हुआ है। फिर मेरा शादी मोरान डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मेरा शादी हुआ है।
0: जी जी, और फिर उसके बाद हाफलोंग आना हुआ आपका?
2: जी, पहले मेरा पोस्टिंग था मिजोरम में।
0: जी
2: जी, मिजोरम में मैं 2016 से 2021 तक वहाँ पे थी। फिर 21 में मेरा ट्रांसफर हुआ हाफलोंग में, फिर मैं अभी तक हाफलोंग में ही हूँ।
0: जी जी, जैसे आपने बताया कि पहले आप मिजोरम में थी, उसके बाद फिर अभी हाफलोंग में हैं आप। जी, चेंजेस भी तो होते हैं ट्रांसफर में, तो कैसा रहा वो जर्नी?
2: बहुत अच्छा ही था। पहले मुझे जब मुझे पोस्टिंग मिला था मिजोरम में, तब मुझे एक डर सा लगा था। तो मिजोरम इतना दूर है, अलग एक स्टेट है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कभी जाना हुआ नहीं था पहले। जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ के लोगों से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग मतलब इतने दयालु है, इतने सच्चे दिल के लोग हैं। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पे। जैसे आपको मालूम है, ट्राइबल लोग तो सीधे रहते ही है।
0: जी,
2: तो जैसे हाफलोंग में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाफलोंग में भी सभी ट्राइबल, नॉन ट्राइबल सभी लोग अच्छे ही है, तो इतना कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ है मुझे।
0: जी, आप जैसे एक्सटेंशन इंस्पेक्टर के पोस्ट में हैं, जी आप एजुकेशन लाइफ में आपने कौन सा स्ट्रीम चूज किया था, एंड देन आप कौन से फील्ड में गई थी?
2: जी, मैंने क्लास 12 साइंस में लिया था, 11-12। फिर उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में है, वहाँ पर से मैंने 2013 में मैंने बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर किया। फिर मास्टर मैंने 2015 में कंप्लीट किया। फिर मास्टर्स ख़त्म करने के बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था। पीएचडी मेरा लगभग एक साल ख़त्म हो गया था, तो पीएचडी करने के समय में मुझे ये नौकरी मिल गई। तो मैं नौकरी, फिर मैंने नौकरी तो ले लिया, और पीएचडी मैंने बीच में रुकाना पड़ गया मुझे।
0: जी, अगर आपको जॉब ना मिलती और पीएचडी आप कंटिन्यू करती, तो आपका क्या बनने का इच्छा था?
2: मेरा एक सपना था मेरे नाम के आगे डॉक्टरेट लिखने का।
0: जी,
2: वो मेरा सपना पूरा होता था अगर मैं ये जॉब नहीं लेती है, और शायद से मैं यूनिवर्सिटी में रहती या फिर प्रोफेसर
0: जी
2: होती थी शायद से।
0: जी,
2: वो मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन मेरा और एक सपना था कि मैं लोगों के साथ, मेरा जो ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज, मतलब ये जो ग्रोअर्स है, जो फार्मर्स है, खेती करने वाले, उन लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, वो एक मेरा सेकेंड वाला ड्रीम था, मतलब सपना था, जो जो वो पूरा हुआ है अभी ये कॉफी बोर्ड के माध्यम से। तो उनको मैं जितना हो सक रहा है मैं उनको वो मैं हेल्प कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए।
0: जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। जैसे आपने बताया कि आप ग्राउंड लेवल से सबके साथ जुड़े हुए हैं, आपका काम कैसा रहता है?
2: मेरा काम रहता है टेक्निकल गाइडेंस देना
0: जी।
2: वो लोग मतलब जैसे अभी बीमारी लग गई हो तो बीमारी को कैसे ठीक करना है, फिर आपका मतलब प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, स्टेट लेवल में अच्छे दाम में कैसे बिक्री हो सकता है, ये सब में मेरा सहायक रहता है वो लोग के लिए।
0: जी जी। और एक बात जैसे आपने बताई है कि आफ्टर मैरिज फिर आप जॉब के लिए मिजोरम से फिर आप यहाँ पे हैं हाफलोंग में, आप बैलेंस कैसे करती हैं?
2: ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है
0: जी।
2: अभी मेरा जॉब 2016 में मेरा लगा है, लगभग 10 साल हो गया है। फिर इसी बीच में शादी हो गया, शादी होने के बाद मेरा एक बच्चा भी है 3.5 साल का
0: जी।
2: बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ होता है, सुबह उठ के बच्चे को छोड़ के जाना, बच्चा फिर माँ माँ करके रोता है, मैं ऑफिस में जाके उसको याद करके मैं रोती हूँ, ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। मैं ये शायद से हर एक जो नौकरी करती है, जो जॉब करती है वो लेडी वो फेस करती है
0: जी। बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया कि आपका बेबी कितना छोटा ही है, 3.5 साल का तो काफ़ी छोटा है, तो आप अपना ड्यूटी ख़त्म करके फिर उसके पास जो आती हो वो सुकून कैसा रहता है?
2: वो सुकून अलग ही रहता है, जब आप दिन भर काम में लगे हो पूरा थक हार के आप घर आते हो, जब वो दरवाज़ा खोलता है मम्मा बोल के चिल्ला के मुझे गले लगाता है, जितना भी थकावट है ना सब चला जाता है
0: जी,
2: फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ।
0: जी। जैसे आप कॉफी बोट में आप पोस्ट में हैं जी, वहाँ पे लोकल पीपल को कैसे हेल्प किया जाता है?
2: मैंने जैसे पहले बोला था टेक्निकल गाइडेंस
0: जी,
2: अभी तो हम लोग डिमासाओ में हूँ, तो डिमासाओ का हर एक गांव में हम लोग जाते हैं, जाके वहाँ पे मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो लोग को जागरूक करते हैं कि कैसे हम लोग हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी बीमारी लगा है तो किसी गाची को उस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है
0: जी।
2: उसके बाद आपका कॉफ़ी को आप कैसे इम्प्रूव करोगे क्वालिटी को, फिर आपको मार्केट में एक अच्छा प्राइस भी मिलना है, अभी जो गरीब लोग हैं उनको सब लोग तो कॉफ़ी के लिए पैसे के लिए ही कॉफ़ी वो कर रहे हैं, और डिमासाओ ऐसा एक जगह है जिसमें आप मतलब इतना ज़्यादा दूसरा जैसे खेती हो मतलब चावल का खेती गेहूँ ये सब नहीं होता है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा पेड़ है जंगल है, तो जंगल के नीचे में कॉफ़ी एक ऐसा क्रॉप है जो मतलब सुइटेबल है। और ये डिमासाओ का कॉफ़ी बाहर में भी बहुत मतलब फेमस है, मतलब इसका जो टेस्ट है, क्योंकि डिमासाओ एक पहाड़ी इलाका है इसका एलिवेशन भी बहुत हाई है, तो इसके लिए डिमांड भी इसका बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से बहुत लोग आते हैं डिमासाओ के कॉफ़ी लेने के लिए
0: जी।
2: तो वैसे हम लोग बाहर से जो ख़रीदार आते हैं उनको हम लोग कनेक्ट कराते हैं लोकल पीपल के साथ, ताकि वो लोग अच्छे दाम में बिक्री कर सके।
0: जी ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे आपने बताया कॉफ़ी के प्रोडक्शन के बारे में, काफ़ी वेराइटीज़ भी रहती है
2: जी, ये स्पेशली 2 वेराइटीज़ है, अरबिका है एक और एक है रोबस्ता
0: जी।
2: अरबिका हो गया आपका टेस्ट उसका स्मूथ है स्वीट होता है
0: जी।
2: और रोबस्ता का थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है तीता तीता होता है, तो ये दोनों को कंबाइन करने से ही इसका कॉफ़ी का टेस्ट तो आता है
0: जी। और ये दोनों ही प्रोडक्शन हमारे डिमासाओ में होता है
2: जी। यहाँ पे अभी जहाँ पे थोड़ा ठंडा जगह है जहाँ ज़्यादा पहाड़ है वहाँ पे अरबिका होता है, अभी जैसे आपका लुंगखोक साइड हो गया है जायोन थोड़ा गर्मी वाला, तो वहाँ पे आपका रोबस्ता वहाँ पे होता है
0: जी। और मतलब आप लोग अपने कॉफ़ी बोर्ड से कॉफ़ी का उन लोगों को सेल करके हेल्प करते हैं
2: जी? पहले में हम लोग ऐसे करते थे जब बाहर के आदमी लोगों को इतना मालूम नहीं था, मार्केटिंग इतना अच्छा नहीं था, तब कॉफी बोर्ड ही लेते थे कॉफी गांव के लोगों से। उसके बाद अभी जब पता चला है बाहर के बायर्स लोगों को कि डिमासाओ में भी कॉफी है, तो अभी बाहर से आदमी लोग आके वो लोग को साथ हाथ में ही पैसा देके एक साथ ले लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड में पहले क्या होता था, वो लोग को एक साथ हम लोग पैसा नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऑक्शन आपका मैसूर में है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, सब गांव से कॉफी इकट्ठा करते थे एक जगह में, गोदाउन में, फिर यहाँ से हम लोग मैसूर में भेजते थे। तो ये सब करते आपका लगभग एक महीना लग जाता था। तो बेचारे जो ग्रोअर्स है हमारे, तो वो लोग तो मतलब एक महीना देरी हो जाता था वो लोग को पैसा मिलने के लिए। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जो बाहर से आदमी लोग आ रहे हैं, तो वो लोग साथ साथ पैसे दे के वो लोग से कॉफ़ी ले रहे हैं।
0: जी जी, आपने जैसे कॉफ़ी के बारे में काफ़ी बातचीत की है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको चाय या कॉफ़ी में से क्या पसंद है और क्यों पसंद है?
2: चाय और कॉफ़ी मुझे दोनों ही पसंद है।
0: जी,
2: जैसे चाय हो गया, सुबह उठ के एक कप चाय तो ज़रूरी है। तो मतलब सिचुएशन देख के होता है। जैसे शाम को अभी आपको रिफ्रेश होना है, तो एक कप कॉफ़ी मिलने से आप रिफ्रेश हो जाते हैं। तो मुझे दोनों ही पसंद है, बस दोनों में से एकदम आपको ज़्यादा क्या पसंद है बोलने से मैं चाय के साथ जाऊंगी। क्योंकि मैं तो हूँ आसाम से ही, तो आसाम में तो चाय को हम लोग नहीं छोड़ सकते।
0: जी, बिल्कुल। जिससे हमने काफ़ी बातचीत की कॉफ़ी प्रोडक्शन के बारे में, उससे हटके मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी हॉबी क्या है?
2: मेरा हॉबी है, मुझे ट्रैवलिंग करना मुझे पसंद है।
0: जी,
2: जगह जगह घूमना, नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, ये मुझे बहुत पसंद है। और वैसे करके मेरे काम में भी ये मेरा हॉबी बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि हम लोग को रोज़ घूमना ही होता है और रोज़ नए नए लोगों से मिलना होता है, उनसे बातें करना होता है। तो मेरा ये जो मुझे जॉब है मेरा, तो उसके साथ भी ये मेरा बहुत हेल्प हो रहा है। और
0: जी, जैसे आपने बताया कि आपको ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है, आप अभी तक में कहाँ कहाँ घूमी हैं?
2: अभी तक मैं अंडमान निकोबार गए हम लोग घूमने के लिए, फिर हम लोग बेंगलोर, फिर आपका केरला, फिर ये अभी नॉर्थ में जाने से आपका राजस्थान, दिल्ली, फिर बनारस, ताजमहल, ये सब ऑलरेडी देख लिया है मैंने। मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ, खाली मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा ये 3.5 साल का बच्चा जब बड़ा हो जाएगा फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे
0: घूमने के लिए। आपका ऐसा कोई मतलब ऑलरेडी ऐसा कोई विश लिस्ट है कि यहाँ यहाँ घूमना या पूरा ऑल इंडिया कवर करना है आपका?
2: हम लोग का प्लानिंग है, हम लोग ने अभी तक सिक्किम दार्जिलिंग नहीं गए और गोवा नहीं गए, ये दो जगह तो अभी जाना ही है।
0: जी हाँ, अब बस इंतज़ार है
2: आपको। इंतज़ार है।
0: जी, जैसे आपने बताया कि आप बहुत जगह ऑलरेडी घूम चुके हैं, तो इन जगहों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद है या उसके साथ कोई मोमेंट जो आपको मतलब याद है?
2: मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहा है अंडमान निकोबार में, मैं फिर से उस जगह में फिर जाना चाहती हूँ। मुझे एक्चुअली स्विमिंग नहीं आता है, फिर भी मैं दिल पे पूरा जोश लेके मैं पानी के नीचे गई, स्कूबा ड्राइविंग किया, फिर वहाँ जितना मतलब देखा मैंने, वो पल वो मुझे आज तक भी याद है और मैं वो फिर से दोबारा करना चाहूँगी मतलब मेरे लाइफ में। और
0: वो एक्सपीरियंस
2: एक बहुत मतलब अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ के लिए ना।
0: जी जी, बिल्कुल जी। मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे हमारा ये वुमेन प्रोग्राम है, वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है?
2: वुमेन के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरे ख्याल से एक फैमिली चलाना या फिर फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा मतलब जो आपके जो घर में जो मेल है उनको आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं ना हर चीज़ के लिए। जब आप दोनों अगर आप काम करोगे, पति पत्नी हो, तो आप लोग का जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है, तभी आपका जो मेल पार्टनर है वो भी रिलैक्स होके रहता है। तो आपका एक ये जो एक घर है, तो वो घर एक मतलब अच्छा माहौल बना रहता है और आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब हर चीज़ के लिए आप पूछना ज़रूरी नहीं है। अभी आपको कहीं कुछ सामान लेना हो तो आपको परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो वो सब के लिए भी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आप इंडिपेंडेंट हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने बच्चे के लिए भी कुछ कर सकते हो, आप खड़े हो सकते हो अपने बच्चे के लिए, डिफेंड कर सकते हो। तो आप स्ट्रांग हो, आपका फैमिली स्ट्रांग होगा, वैसे करके आपका समाज भी स्ट्रांग होगा, वैसे करके हमारा देश भी बहुत उन्नति होगा अगर।
0: बिल्कुल
2: जी।
0: जैसे आपने बताया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, आपको लगता है कि एजुकेशन वुमेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन चीज़ों के लिए?
2: जी ज़रूर, एजुकेशन तो मतलब प्राइमरी एक है, एजुकेशन तो जरूरी है, होना ही है। एजुकेशन नहीं रहे होगा तो आपको काम कैसे मिलेगा, आपको आपका राइट्स कैसे पता चलेगा, आप सही हो या आप गलत हो आपको कैसे पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन तो जरूरी है, और आप अपने बच्चे को पढ़ा सकोगे, आपको बच्चे को सही गाइड कर सकोगे।
0: जी बिल्कुल
2: जी
0: जी। आजकल के टाइम में और एक चीज़ें कि सोशल मीडिया काफ़ी हाइप में है, और सोशल मीडिया से भी काफ़ी कमा लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: वो तो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है
0: जी।
2: अगर वो लोग अगर खुश है सोशल मीडिया से, वो लोग खुश है तो हम लोग भी खुश है।
0: जी जी जी। अभी हाल ही फिलहाल में मतलब 10 मई को मदर्स डे था जी, और आप खुद भी एक माँ है, तो वो फीलिंग जो रहता है मातृत्व का कैसा लगता है?
2: अभी मुझे मेरा मम्मी के बारे में याद आ रहा है, अभी मेरा मम्मी का जो सेक्रीफाइस है, वो आज जो मैं हूँ
0: जी
2: वो सिर्फ मेरी माँ के वजह से ही है। मेरी माँ अगर स्ट्रांग नहीं होती, हम लोग अगर मुझे पढ़ने के लिए नहीं उत्साहित नहीं किया होते, तो आज मैं ये पोजीशन में मैं नहीं होती। तो वैसे करके मैं मतलब जब मेरा बच्चा को देखती हूँ, वो वाला फीलिंग्स मुझे आता है कि मैं भी शायद से मेरे बेटे के लिए मैं वो कर सकूँ।
0: जी जी।
2: और इस बार उसके स्कूल के तरफ से, इस बार स्कूल डाला है मैंने उसको नर्सरी में, तो उसके स्कूल के तरफ से भी मतलब वो बोला गया था वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग ने वीडियो ये सब बनाया, बहुत इंजॉय किया। मदर्स डे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोग ने, और ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम ही है मतलब हम लोग ने ये मदर्स डे बोल के सेलिब्रेट किया है।
0: जी, ये काफ़ी खुशनसीबी की बात है हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर जी। जैसे आपने बताया कि आपके मम्मी ने कितना कुछ किया है एंड पढ़ने के लिए काफ़ी जोर दिया है, कितना फोकस रहना पड़ता है पढ़ाई में जब आपको कोई भी एक डिटर्मिनेशन चाहिए या आपका एम इन लाइफ के लिए?
2: अभी फोकस तो अगर एम इन लाइफ अगर सेट हो तो फोकस तो रहना ज़रूरी है
0: जी।
2: अभी फोकस होना तो ज़रूरी है। मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मुझे मेरी मम्मी स्ट्रिक्टली मुझे कहीं घूमने के लिए नहीं जाती देती थी
0: जी।
2: दूसरे मतलब रिलेटिव्स के वहाँ पे जाने से भी मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा बोल के, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेलने के लिए भी थोड़ा सा समय देती थी। फिर उसके बाद क्लास 12 पास हुई बे, फिर 12 के बाद ये जो एग्रीकल्चर जो लाइन पकड़ा है
0: जी,
2: वो मेरा अपना डिसीजन था। मुझे मेरे घर से तो मुझे मना किया था एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे जीत से मैंने ये पढ़ाई किया, और जो कि मुझे दिखाना था, सबको प्रूव करना था कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है, गलत नहीं है। तो मैंने बहुत मेहनत किया पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई करके नौकरी भी मिला मुझे, सक्सेस भी हुए। अभी वो लोग सब खुश है मेरा ये डिसीजन से, जो कि मैंने क्लास 12 पास करने के बाद लिया था जो ये डिसीजन।
0: जी, ये बहुत ही अच्छी बात है जी। अब हम हमारे कार्यक्रम के शेष तक आ चुके हैं, मैं चाहूँगी कि जितने लोग भी आज आपको सुन रहे हैं सबके लिए आपकी ओर से एक मैसेज दीजिए।
2: मैं ये सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपके लाइफ में बहुत लोग आएंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। आप खुद को कम मत समझिए, आपको जैसे भी हो, आपका जो लाइफ जो आपका जो गोल है जो एम है, आप उसको जैसे भी हो सक्सेस करना ही है, और दुनिया को गलत प्रूफ करना है। तो इसीलिए मैं यही मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो भी हो गोल पे फोकस कीजिए।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए, धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद
0: जी। आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, वुमेन प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे एक वार्तालाप। सीता छेत्री के साथ बातें कर रही थी तृष्णा चक्रवर्ती। अब इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग, पहले सुनिधि चौहान और विजय प्रकाश की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का वुमेन प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ी फेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के हफलंग केंद्र में पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब आज का दिन, इस दिन आज के दिन के विशेषताओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इसकी शुरुआत आइए करते हैं एक खूबसूरत कविता से।
3: काजी नजरुल इस्लामेर खुकियो काठबिराली काठबिराली काठबिराली पियारा तुमी खाओ गुड़ मुड़ी खाओ दूध भात खाओ बातावी लेबू लाओ पीराल बच्चा कुकुर छाना ताओ जाइनी तू ओका पे तू खाओ एका पाओ जेठे जेठे बातावी लेबू शोकर उलो एकला खेली दुबिये नुलो तो जे बड़ी ले जुचिए पुचुस पचुस चो छोचा तुम्ही तुम्हारे संगे आड़ी आमर जाओ काठबिराली বদর মুখী মর বছুরে দিল দেখবি তবে রাঙ্গাটাকে ডাকব দেবে ঢিল পেয়ারা দেবে জাতি ও জাতি তো তোর ডাকতি বোচা কুতুম চুকি গাপুস কুপুস একলাই গাপুস কুপুস পেটে তোমার পিলে হবে কুড়ি কুস্তি মুখে এ বুকু বান একটা পোকা যা যাস পেতে ওর ঢুকে ইস মস্ত বানা হয়েছে পাকাতাও আমিও খুবই পেয়ারা খাইছে একটি আমায় দাও কাঠবিড়ালি তুমি আমার সত্যি হবে বৌদি হবে রাঙা দিদি তবে একটা পেয়ারা দাও না এ রাম তুমি ন্যাংটা পুতো ফ্রকটা নেবে জামা দুটো আর কেউ না পেয়ারা দোবে বাতাবি লাগুও ছাড়তে হবে দাঁত দেখে জিতছো যে ছুট ও মা দেখে যাও কাঠবিড়ালি তুমি মরো তুমি তুমি তুমি কচু খাও।
0: দোস্তো, ইস খুবসুরত কবিতা কো আপনে সুনে হাফলং পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কে কক্ষা 3 মে পড়নে ওয়ালে ছাত্র সম্ভ্রান্ত দে কে আওয়াজ মে

अब आरंभ करते हैं आज के दिन की विशेषताओं के बारे में। भारत और दुनिया के इतिहास में हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतिहास में पीछे पलट कर देखते हैं तो हर दिन कुछ विशेष घटना घटी है जिसने अपना दर्जा इतिहास में अंकित कर दिया है। 17 मई यानी आज के दिन भी इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी होंगी। आइए जानते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए 1769 में बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत 1865 में हुई थी। थोर हेयरडल ने 1970 में इसी दिन मोरक्को से यात्रा की शुरुआत की और अटलांटिक महासागर को 57 दिनों में पार कर लिया। जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबेई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। आज के दिन 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरलिस्ट्स ने 2000 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की। पाकिस्तान में मृत अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का शव 2002 में कब्रिस्तान से बरामद किया गया था। 2008 में बिहार के परिवहन मंत्री रामानंद प्रताप सिंह ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। आज के दिन 2010 में भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने 2010 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, ये थे 17 मई में घटने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं।

दोस्तों, अब जानते हैं आज के दिन जन्मे कुछ महान व्यक्तियों का नाम तथा आज के दिन निधन हुए कुछ महान व्यक्तियों का नाम। प्रसिद्ध चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर का जन्म 1749 में हुआ था। हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का जन्म 1897 को हुआ था। देश के मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म हुआ था 1951 में। 1953 में हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म हुआ था। आज के दिन 1972 में पद्मश्री से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के का निधन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्णन नायर का निधन हुआ था 2014 को। 2021 में भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ के अग्रवाल का निधन हुआ था।

दोस्तों, आज विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 1969 से प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसकी स्थापना 17 मई 1865 को पेरिस में हुई थी, जब पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 1973 में स्पेन के मलागा टोरेमलिनोस में ITU पूर्णाधिकार सम्मेलन में इस आयोजन को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। प्रत्येक वर्ष एक विषय चुना जाता है और उस विषय से संबंधित कार्यक्रम विश्व भर में आयोजित किए जाते हैं। दूरसंचार, विशेषकर इंटरनेट के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ते महत्व को देखते हुए यह महसूस किया गया कि इस विषय को भी जन ध्यान में लाना आवश्यक है। सन 2005 में सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में से 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस घोषित करने का आह्वान किया। इसका उद्देश्य इन प्रौद्योगिकियों के महत्व और शिखर सम्मेलन में उठाए गए संबंधित सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की व्यापक श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2006 में संकल्प लिया कि विश्व सूचना समाज दिवस वास्तव में प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाएगा। बाद में सन 2006 में तुर्की के अंतल्या में ITU पूर्णाधिकार सम्मेलन में दोनों समारोहों को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में संयोजित करने का निर्णय लिया। विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से समाज और अर्थव्यवस्थाओं को मिलने वाली संभावनाओं के साथ साथ डिजिटल विभाजन को पाटने की तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्रत्येक आयोजन के लिए एक विशेष विषय पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बातें विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस के बारे में।

दोस्तों आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस इस साल आज के दिन मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने के लिए इस साल का मुख्य विषय यानी थीम है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सटीक माप को बढ़ावा देना और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से स्ट्रोक, हृदय रोग और किडनी की बीमारियों को कम करना है। यह दिन इस बात पर जोर देता है कि अपने रक्तचाप के स्तर को जानें और इसे 120/80 mmHg या उससे कम

रखने का लक्ष्य रखें। इस दिन दुनिया भर में स्वास्थ्य शिविर, मुफ्त ब्लड प्रेशर जांच और जागरूकता रैलियां आयोजित की जाती है। उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। कम नमक का सेवन करें, भोजन में नमक यानी सोडियम की मात्रा कम करें, स्वस्थ आहार का सेवन करें, फल सब्जियां और कम वसा यानी कम फैट वाले डेयरी उत्पाद खाएं, नियमित व्यायाम करें, प्रतिदिन योग या तेज चलना जैसी शारीरिक गतिविधियां करें, तनाव प्रबंधन करें, योग और मेडिटेशन द्वारा तनाव कम करने की कोशिश करें, नियमित रूप से अपना बीपी चेक कराएं। दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि उच्च रक्तचाप एक खामोश हत्यारा यानी साइलेंट किलर है, जिसे समय पर पहचान कर और जीवन शैली में बदलाव कर नियंत्रित किया जा सकता है।

तो दोस्तों, ये थी 17 मई यानी आज के दिन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी। और अब आइए आनंद लेते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों का। पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में रॉकी फिल्म से आइए सुनते हैं।

आपके गीत। दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

आकाशवाणी का ये हफलंग केंद्र है। दोस्तों अब आरंभ करने जा रहे हैं चिल्ड्रन प्रोग्राम। ये कार्यक्रम बच्चों पर आधारित होता है, बच्चों के लिए कुछ बातें करते हैं, कुछ गीत सुनवाते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, नवजात बच्चे, छोटे बच्चे, इनके कपड़ों की रखरखाव, उनके त्वचा की देखभाल किस तरह से हम कर सकते हैं, कपड़ों के माध्यम से, उनके खिलौनों के माध्यम से, इस बारे में। और साथ ही हमारे नन्हे दोस्तों के लिए कुछ खूबसूरत गीत भी हम सुनवाएंगे। दोस्तों बच्चों की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है, उनकी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए उनके कपड़ों की धुलाई, वो रखरखाव के ये तरीके अगर आप अपनाते हैं तो बच्चों की त्वचा पर कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। हम जब भी अपनी नन्ही सी जान को अस्पताल से घर ला रहे होते हैं तो उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे के आने से पहले ही खूबसूरत रंग बिरंगे क्यूट कपड़ों से घर भरा होता है। दोस्तों मगर इनकी खरीदारी और धुलाई करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कपड़ों के साथ जुड़ी होती है बच्चे की सेहत और सुरक्षा। कपड़े खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए हमेशा मुलायम और आरामदायक कपड़े ही खरीदें जिन्हें धोना आसान हो, फैब्रिक ऐसा हो जिससे बच्चे की त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचे। बच्चों के लिए कॉटन के कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कॉटन के कपड़े धुलने के बाद सिकुड़ जाते हैं, इसका ध्यान रखें। और फैब्रिक अगर अच्छा हो तो कपड़ों के लिए ठीक रहता है और बच्चों के त्वचा के लिए भी ठीक रहता है, मगर कुछ कपड़े धुलने के बाद सख्त जैसे हो जाते हैं, इसका ध्यान रखें। बच्चों के कपड़े 3 माह के अंतराल में आते हैं, यानी कि 0 से 3 माह और 3 माह से 6 माह, इसी साइज़ के बच्चों के कपड़े आते हैं। तो आप जब भी कपड़े ले अपने नन्हे मुन्ने के लिए तो साइज़ का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे को कभी भी ओवर साइज़ कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़े गर्दन और सिर पर चढ़ सकते हैं जिससे कि दम घुटने का खतरा हो सकता है।

बच्चों की जो देख रेख के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, वे भी बच्चों की सुरक्षा के लिए यही सलाह देते हैं कि बच्चों के लिए हमेशा सिंपल और मुलायम कपड़े ही खरीदें। बच्चों में इन कपड़ों को बच्चों को ना पहनाएं जिनमें डोरिया हो, बटन हो, रिबन हो, क्योंकि हो सकता है कि खेल खेल में बच्चे बटन निगल जाए या डोरियों से उसे कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। इन चीज़ों का ध्यान बच्चों के कपड़े खरीदते वक्त अवश्य देखें। ऐसे कपड़े खरीदें जो आसानी से खुल जाए ताकि कपड़े चेंज कराते वक्त बच्चे को दिक्कत ना हो। सामने से खुलने वाले और ढीली आस्तीन के कपड़े अच्छे रहते हैं। ऐसे फैब्रिक के कपड़े लें जो स्ट्रेच हो जाए ताकि उन्हें पहनाना और उतारना आसान हो। ऐसे कपड़े बिल्कुल ना खरीदें जिनमें जिप लगी हो। दोस्तों, हमारे नन्हे मुन्ने हमारे जान होते हैं। आगे हम इनकी देखभाल के लिए बातें करेंगे। कपड़े धोने किस तरह से चाहिए और कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में अब एक गीत सुन ले।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद हम वापस आते हैं अपने नन्हे मुन्नों की देखभाल के ऊपर। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया है और आप सभी को ये पता भी है कि बच्चे की त्वचा संवेदनशील होती है, इसलिए सामान्य डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें। रंगीन और खुशबू वाले डिटर्जेंट तो बिल्कुल भी ना लगाएं। बेहतर होगा उन्हीं कपड़े धोने वाले माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के कपड़ों को पानी से अच्छी तरह से खंगालें ताकि डिटर्जेंट पूरी तरह से निकल जाए। अगर बच्चे की त्वचा अधिक संवेदनशील है तो विशेष रूप से छोटे बच्चों के कपड़ों के लिए मिलने वाले डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल आप अवश्य करें। बच्चे के कपड़े छोटे और मुलायम होते हैं, इसलिए उन्हें वॉशिंग मशीन के बजाय हाथ से धोए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप मशीन में धो रही हैं तो ड्रायर में ना सुखाए, खुले स्थान पर ताज़ी हवा और सूर्य की रोशनी में सुखाए। अगर आप फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेबी स्पेसिफिक सॉफ्टनर का प्रयोग करें, पर बच्चों के हर एक कपड़े को धूप में जरूर सुखाएं। बच्चों के कपड़े को अच्छी तरह से अगर साफ सफाई ना की जाए तो उन्हें अन्य बीमारियां भी हो सकती है। आइए इन पर भी थोड़ी सी बातें कर ले। कपड़े पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़े। बच्चे के डेलिकेट बेबी क्लॉथ्स पर लिखे निर्देशों के हिसाब से ही चलें। ज़्यादातर कपड़े ज़्यादा तापमान से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कपड़े धोते समय ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, कुनकुने या ठंडे पानी से ही धोएं। बच्चों के कपड़ों का रंग, फैब्रिक और दाग धब्बों के आधार पर दो से तीन हिस्सों में बांट लें। एक तरह के कपड़ों को एक साथ धोएं, इससे धोने में सुविधा होगी और कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में धोने में बच्चों के कपड़ों में यदि दाग धब्बे लग गए हैं तो उन पर बेबी फ्रेंडली माइल्ड डिटर्जेंट लगाकर हल्के हाथ से रगड़े, इससे दाग हल्के हो सकते हैं। बाद में सामान्य तरीके से धो ले। आगे कुछ और भी आपको बताएंगे कपड़े धोने के कुछ और तरीके, ताकि हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे स्वस्थ रहे। पर इससे पहले आइए एक और गीत सुन लें।

दोस्तों, गीत से पहले हम बातें कर रहे थे बच्चों के कपड़े धोने के कुछ तरीकों के बारे में, जिससे कि उन्हें कुछ अन्य बीमारियां ना लगे। जब बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदे तो उन्हें पहनाने से पहले अगर धो ले तो कपड़े बनाते वक्त कपड़े में लिए गए रसायन शिशु को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। यही नहीं, कपड़ों पर यदि किसी तरह की गंदगी या धूल मिट्टी लगी होगी तो वो भी धुल जाएगी। सिर्फ कपड़े ही नहीं, ब्लैंकेट, चादर, बिस्तर आदि जो शिशु की त्वचा के सीधे संपर्क में आते हैं, प्रयोग से पहले अगर धो ले और अच्छी तरह से धूप में सुखा ले तो अच्छी रहती है। अगर ऐसा न कर पाए या ऐसा करना संभव नहीं है तो बच्चे की कोमल त्वचा पर खुजली या रैशेस की समस्या पैदा हो सकती है। बच्चे के कपड़े को कीटाणुओं से मुक्त रखने के लिए कुछ महिलाएं उन्हें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में भिगोती हैं, पर ये बिल्कुल उचित नहीं है। इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी त्वचा में हानि पहुंच सकती है। तो माता पिता ये अवश्य ध्यान में रखें कि बच्चों के जो कपड़े हैं उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में बिल्कुल ना रख भिगोएं। कपड़ों को फर्श पर रखकर रगड़ने के बजाय हाथ में या रबर शीट अथवा मशीन के ढक्कन पर रखकर साफ करें। बच्चों के कपड़ों को घर के दूसरे सदस्यों के कपड़ों से अलग से धोएं। अक्सर बड़ों के कपड़ों में गंदगी ज्यादा होती है। सभी कपड़े साथ धोने पर उनमें अगर उनके कपड़ों के कीटाणु बच्चों के कपड़ों में आ सकते हैं। कपड़े सूख जाए तो उन्हें प्रेस कर ले ताकि रहे सहे कीटाणु भी मर जाए। कपड़ों को तह लगाकर कवर में या कॉटन के कपड़े में लपेट कर रखें ताकि साफ सुथरी रहे। और हमारे जो नन्हे मुन्ने हैं, जो छोटे से हमारे जान हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे। और अगर कोई तकलीफ पहुँचे तो अवश्य डॉक्टर की सलाह लें, उन्हें तुरंत दिखाएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इन जानकारियों से आप सभी को थोड़ा सा फायदा अवश्य मिलेगा। और इन्हीं जानकारियों के साथ हम समेटने जा रहे हैं आज का चिल्ड्रन प्रोग्राम कार्यक्रम। और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
9: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार प्रभात अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओ, हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। अब आरंभ करते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम।

दोस्तों, समय हो गया है सुरों की रंगोली कार्यक्रम का, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम। हम आपको सुनवाते हैं, इस समय लेकर आते हैं कुछ खूबसूरत गीत अलग अलग कलाकारों की आवाज़ में। आज लेकर आए हैं वैसे ही कुछ खूबसूरत गीत। आइए दोस्तों, आनंद लेते हैं आज कुणाल गांजावाला के गाए कुछ खूबसूरत गीतों का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुरों की रंगोली कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुआर आंचलिक बातरी।

आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए पुआर आंचलिक बातरी अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओ, हम आकाशवाणी के हाफलिंग केंद्र से बोल रहे हैं। अब आरंभ करते हैं इस सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। सबसे पहले खिलमा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दोस्तों सुनते हैं भक्ति गीत लाल रणाओं में पाईते और उनके साथियों की आवाजों में।

लालरिनाव में पाईते और उनके साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का खेलमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अब आरंभ करते हैं रंगखोल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनते हैं भक्ति गीत लियन नैवम रंगखोल और उनके साथियों के आवाजों में।

लेनेवम रांखोल और उनके साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का रांखोल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। सुनते हैं आधुनिक गीत इवर वास्टिंग लकियांग की आवाज में।

इबरवास्टिंग लाकियांग के गाए इस आधुनिक गीत के साथ ही आज का जयंतिया कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं बेते कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनते हैं आधुनिक गीत रिन्ना लालचोंगचामा दारनेई और उनके साथियों के आवाजों में।

0: के साथ ही आज का बेते कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, साथ ही समाप्त होता है इस सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम भी। हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं। अब समय हो गया है विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनने का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। दोस्तों, अब आनंद लीजिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जा रहे विविध भारती के अगले कार्यक्रमों का।
1: प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो मंचीय प्रस्तुति?
2: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया। अच्छा, मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था।
1: हाँ हाँ।
2: तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
1: जी।
2: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
1: जी जी जी।
2: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
1: हाँ हाँ।
2: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके गले में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं, वो ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी। तो षणमुखानंद में शो था।
1: हाँ।
2: और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे। तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
1: हाँ,
2: नाम नहीं बताऊंगी। तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो
1: जी।
2: पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है तो।
1: हाँ।
2: खर्च के जो सुर होते हैं।
1: हाँ।
2: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
1: हाँ।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
2: ये दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
2: बहुत,
1: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी, वो दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ हमारा, तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ।
1: तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा।
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ।
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दातार जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला हम वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा।
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ।
1: तो बस तो उनको मजा आता था सुनने में।
0: क्या बात।
1: उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ।
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रे का फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा, कटआउट बनाया
1: था, कट आउट बनाया था।
0: हाँ, हाँ।
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी।
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ।
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा।
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा,
1: ऐसा अच्छा, लगता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ।
1: मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा।
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, हाँ। ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज हाँ किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल,

0: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन
1: हाँ,
0: अनुभव से
1: हाँ,
0: आपको मालूम होना चाहिए
1: हाँ,
0: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं
1: जी,
0: एक साथ लघु पाठ पांच छह शांत धीमे गीत फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं
1: अच्छा, अच्छा।
0: फिर दो गाने के बाद ये गाना कोटा सफाज गाना फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप हाँ समझना चाहिए, वो सिखा
1: अच्छा,
0: के नहीं आती बात
1: अच्छा, अच्छा।
0: और जहाँ तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गाँव में छोटे से गाँव में भी तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
1: अच्छा
0: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
0: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा,
0: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे। पहला पमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: रफी साहब का गाना एक दुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: वो आगे आके उनको उसको एक मतलब ना मैं बताती हूँ आपको,
1: हाँ,
0: रफी साहब पहले शुरू करते थे
1: जी।

0: जानी इसकी परसो भी रहेगा और तरसो भी। मैं क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी। तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं
0: जरूर।

0: विमला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा ना।
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है।
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, हाँ, ये होता है, ये ठपका दोष आता है इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगड़ धिंगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है,
0: क्या बात है।
1: दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो,
1: शालीनता हो
0: तो जरूर, सवाल ही नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के,
1: होते
0: लिए
1: थे कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
0: अच्छा।
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल स्टेट मुंबई के आसपास और बाहर गाँव में भी
0: जी, जी।
1: बहुत सारी कंपनी उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, भी नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी। प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है। ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: सही बात
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा।
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा।
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा।
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखे सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा धुलिया के पास, तो वहाँ पे एक आदमी आया मेरे पास शो जैसे आते हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा, म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
0: तो
1: पुराने जो गाने बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
0: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है,
1: उनके दिमाग में
0: वैसा वो सुनना चाहते हैं।
1: अभी वो गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए उधर, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
0: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
1: जी,
0: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
1: मिलता नहीं है, सही बात।
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढुलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था, सालों साल तक
0: जी।
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, तो शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करे। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से तो बदली हो जाएगा
0: जी।
1: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी होगा जी। तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
0: जी।
1: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
0: जी,
1: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
0: अच्छा।
1: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको, शो को।
0: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
1: विनय मांडके बोलूंगी, विनय मांडके,
0: विनय मांडके जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं
1: जी, जी।
0: तो
1: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्मर होता है वो था, बहुत सारे हल्की फुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
0: अच्छा।
1: तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया
0: बहुत अच्छे।
1: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली। तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
0: मस्ती के मूड में
1: मस्ती के
0: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसका। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर
1: जी,
0: साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं पड़वा के शो में, वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भार्गव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछती है कि कसं भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, एवढे प्रवास करायचा, पर गायला उभं राहायचं कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग

0: समय पे अलग अलग शोज में आपने
1: जी
0: अलग अलग गाने उनके
1: हाँ जी
0: गाए
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
1: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
0: हाँ
1: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियाँ आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ाला पिकलाया अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: थांबा आरे घे पडाला पिकलाय आंबा आलावाय पडाला पिकलाय आम हो नीट बघ पडाला पिकलाय आंबा. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी.
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे.
1: अच्छा.
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से. फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था. उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया, उनको भी शायद
1: प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: गाती थी. हाँ.
1: और अपनी लिस्ट में
0: कन्नड़ा गाना सुनाती हूँ.
1: जी जी जरूर.
0: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे.

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वही गाना था।
0: हाँ हाँ।

0: ये गाना बहुत दरे था। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट, हाँ, हाँ। वो पहन वाला बैठे थे तो एक आदमी पहले रो में ऐसा एक पाँव ऊपर और सर बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बहन नवो पिक्चर लो गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी।
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई,
0: हाँ,
1: होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें।
1: अच्छा?
0: जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ?
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे,
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, फिर पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो वही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुनकर के।
0: हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है
1: करम।
0: कि आज आप यहाँ पधारी,
1: बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिस तरह आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: पर है डूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले। कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन यार पिंकी, ठीक 3 बजे मॉल पे मिल। वो क्या है ना, सेल चल रही है और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
1: अरे देख यार, तू कोई और टाइम रख लेना, 3 बजे तो मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ।
0: कहीं आती जाती नहीं, ऐसा क्या करती है तू 3 बजे?
1: अरे तू इतना नहीं जानती, 3 बजे तो सारी सखियाँ कहीं आती जाती नहीं, क्योंकि वो सुनती है
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का नमस्कार।
0: मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर
0: जी,
1: मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है
0: जी। बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका ये बहुत मशहूर शेर है
0: जी। और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
1: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
0: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है। और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता
0: जी।
1: तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोताओ 24 मई उनकी याद का दिन है।
0: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का
1: जी जी।
0: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
1: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
0: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है और पिता के जमाने में जो फिल्में थीं वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मनीषा
1: जी,
0: जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने।
1: जी जी जी।
0: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया
1: जी।
0: तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुश्तकिल, अरे साहब,
1: क्या बात है, क्या
0: संगीत
1: है, क्या बात है।
0: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
1: बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम हैं मताए कूचाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और दे दे हैं अपने श्रोताओं के दिलों पे एक

0: मजरूह लिख रही है वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा।
0: तो श्रोताओं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था, 5 मिनट का, याद है ना अमर जी?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
0: जी,
1: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
0: जी। हाँ।
1: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउस होल्ड माना जाता था,
0: जी,
1: हर
0: जी,
1: घर
0: जी,
1: में
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता।
0: जी हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं, आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज।
2: चित्रशाला, आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
3: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामत बहुत खूबसूरत बना लेता है, ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं, इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सुबह तक चलेगी जरूरी नहीं है शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है, ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मज़ाहिर, ये चीज़ें जो जब तक जिंदा हैं, हमारी रात रात रहे, हमारी ज़िंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या ना देखें हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं। कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज़ है, तो इतना गम और इतना रंज जो हमें गवारा है वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिशे गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिशे गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिशे गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, कि कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाहजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर्न होता गमे रोजगार होता। मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया, देखिए शायद ये चीज़ आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें, मुझे दोनों एक ही लगे हैं कि अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल, अय दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जब मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं इनमें इंसान अहम तरीन चीज़ है, उसने दुख भी सबसे ज़्यादा उठाए हैं सुख भी सबसे ज़्यादा उठाया है। तो अर्ज किया है कि सहरा में बगूला भी है मजरूह सबा भी, सहरा में बगूला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया।
1: तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है
0: जी।
1: और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी,
0: जी
1: कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें, उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं
0: जी। हाँ।
1: तो अब आप ये बताइए कि मजरूर साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है, कुछ और भी है आपके पास?
0: बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है। एक इंटरव्यू है, और हमारे विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे, खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग।
4: मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े, जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से
5: जी
4: यानी जाने जाते थे, फिर बम्बई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई?
5: साहब, मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादसों से गुजरी।

0: ठीक है,
1: जी
0: मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे,
1: जी
0: मगर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो किसान की हालत रह गई।
1: जी
0: सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो है किसानों की जिंदगी और सामाजिक हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना,
1: जी
0: और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना। अब
1: शायद
0: सच
1: यही बागपन जो है आपकी
0: जी
1: शायरी में है, और आपका ये शेर कि सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ,
0: अपनी
1: अपनी
0: कुला
1: कुलाह कज है उसी बागपन के साथ,
0: दुरुस्त।
1: शायद ये उसी
0: हाँ, वो
1: का
0: हम लोगों का
1: समर है,
0: मिजाज।
1: नतीजा है।
0: जी हाँ, हम लोगों का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। तो साहब, ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली
1: जी
0: अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बायकॉट शुरू हो गया था,
1: जी
0: और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने यह तय किया कि साहब, मैं उनका अकेली औलाद उनकी,
1: जी
0: उन्होंने ये कहा कि साहब, मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा।
1: अच्छा
0: चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो
1: जी
0: हवादिस की बात कर रहा हूं,
1: जी
0: अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका, और वहां से रिस्ट्रिकेट हुआ
1: अच्छा
0: अपनी आजाद अरबी पर।
1: जी
0: और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ, और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की।
1: जी
0: तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी, और कामयाब तबाबत की।
1: जी
0: लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था
1: जी
0: तकसीम से पहले, मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी, और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाद जो है ऐसी रिश्वत और ऐसा ढोस है।
1: जी
0: चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा, और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा,
1: यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने
0: हकीम
1: लगा
0: पे हावी होने लगा, और हो गया
1: जी
0: आखिरकार।
1: जी
0: चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े
1: बहुत
0: उस्ताद
1: बड़े
0: और बहुत
1: जी
0: बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना, और उन्होंने कहा आप मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब, सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके जी में क्या आई, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुबा ही नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी, जो ऐसे तलबा
1: जी
0: जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देख रेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी, उसके
1: अच्छा
0: चेयरमैन भी थे।
1: अलीगढ़
0: तो
1: के जी
0: उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से ना कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए। तो
1: अच्छा
0: मैं वहां 3 साल रहा। 3 साल रहा सन 44 के आखिर तक।
1: जी
0: सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ, तो जिगर साहब वहां से गुजरे, और मैं उनके जेर साया, शेर तो पहले कहता ही था
1: जी
0: लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेर साया राजे हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा नहीं कि
1: जी
0: तुम गजलें कहो, लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहानी,
1: जी
0: डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह
1: वाह
0: चुके
1: जी
0: हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन,
1: जी
0: ये
1: यानी
0: बड़े
1: दानिश्वर बड़े
0: दानिश्वर,
1: बुजुर्ग
0: बड़े
1: लोग
0: बड़े
1: जी
0: आते थे। और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी को, दो को बुला लिया करते थे, और
1: वाह
0: हमें शेर सुनाने पड़ते थे। तो
1: जी
0: पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के शोरा को देखते हो, मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। तो मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे उछारे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मगज आना शुरू हुआ मेरी शायरी में थोड़ा बहुत,
1: शऊर आया
0: हाँ शऊर आया,
1: एक
0: लेकिन उस शऊर की कोई सम्त मुय्यन नहीं थी। और बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुस्बत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन
1: जी
0: वो मुस्बत हो, मनफी बात ना हो,
1: मनफी ना हो,
0: निगेटिव ना
1: निगेटिव नहीं
0: हो,
1: हो
0: हाँ
1: जी
0: ना हो, इतना तो जरूर रहा।
1: पॉजिटिव एटीट्यूड
0: अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहां एक दिन, तो कहने भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई? मैंने कहा चलिए। 84 सन 45 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में, उस जमाने में यहाँ,
1: जी
0: और वो इकबाल डे बनाया करते थे, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था वो,
1: वाह
0: उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बंद गई, वो
1: वाह
0: जैसे होता है ना एक शायर की हवा बंद जाती है। तो मौलाना असद मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे,
1: अच्छा
0: जिगर मुरादाबादी उस महफिल में मौजूद, यगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा
1: वाह
0: मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़के की चल गई, मेरी आवाज बड़ी
1: नहीं
0: अच्छी
1: सिर्फ
0: थी।
1: गवैये नहीं है शायर भी अच्छे हैं यार
0: बहरहाल
1: बस नहीं
0: एनीवे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म, एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से के मुतल्लिक से के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वो यूं ढूंढते थे कि पुराने ज्यादा पैसे लेते हैं
1: जी,
0: नया कम पैसे लेगा
1: जी।
0: चुनाचे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और लिमिटली मुझे 500 रुपये माहवार पर सन 45 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपये बहुत होते थे। तो जो गोया यूं मैं फिल्म लाइन में आया।
1: अब गाने बड़े मशहूर हुए थे
0: जी हाँ,
1: जब दिल ही टूट गया
0: तो उनको सैगल मरहूम पसंद था, कि उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए। बचता हुआ चुना चला और मैं ऐसा ही हुआ था कि ये गीत उनकी अर्थी के साथ गया था, जब दिल ही टूट गया हम जी के।
1: उससे तो और भी शोहरत।
0: जी हाँ, शोहरत हुई, बहुत काफी शोहरत हुई। लेकिन फौरन ही मैं दिलचस्प बात जो कह रहा हूँ वो ये कि मेरी देखिए 3-4 मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने
1: जी,
0: वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लैंड नहीं है
1: जी,
0: प्लैंड कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे के हिस्से से। अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 पे फसादा शुरू हो गए। 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी, उनके मुसन्निफीन जो वहाँ राइटर होती उनसे हमारा लिंक पैदा हुआ। और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी, वो एक समझ मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। पहले मुगल पीरियड में या शाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी, इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इसको मोहब्बत की बातें करो चुप हो जाए, बल्कि उसका एक सामाजिक रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था,
1: वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर।
0: यकीन और यकीन के दरमियानी रास्ते पर।
1: लेकिन एक सवाल यही ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता?
0: कर सकता है। मतलब आप दयाशंकर नसीम की मसलन लीजिए, गुलजार नसीम
1: जी,
0: उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर मबनी है
1: जी,
0: कि नेकी करो
1: जी,
0: नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका, ये ह्यूमन अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी के बगैर कोई बात कोई मुतबर हो ही नहीं सकती। लेकिन जब हमने अर्थ जैसा अर्थ किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना
1: जी,
0: उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना सामाजिक नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ। उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो हैं उनको तोड़ फोड़ डाला गया
1: और नए अकदार बने।
0: हाँ, अंगारे लिख डाला हमारे अदीबों शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झिझोड़ने वाली बातें थी और जाहिर है कि वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त वो जरूरी थी उस तरह की बातें। इसमें लिहाफ लिख डाला, मंटो ने बू लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी।
1: लेकिन मजू साहब, आपकी शायरी का जो एक मजमुई असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग
0: जी,
1: जहां तलक ये सितम की सियारात चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
0: जी हाँ, ये आप
1: इस किस्म के बेशतर अशार हैं जिनसे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है।
0: हमारे एक बहुत बड़े नक्काद थे
1: जी,
0: एहतशाम हुसैन साहब
1: जी,
0: उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं
1: जी।
0: इत्तेफाक
1: तो इसके पीछे क्या कोई शऊरी कोशिश है या ये एक अंदर से
0: शऊरी कोशिश? तो देखिए जनाब
1: जी,
0: किसी एक नुक्ते नजर के जैसे मैंने बताया सामाजिक सियासी वगैरह, उसको सामने रख के शऊरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की।
1: अच्छा,
0: लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था, जिसमें शकील मजानी, कुमार अबार बंकी, इस तरह के, उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से हमें गालियां पड़ी कि साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया, तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तनहा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊं आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तनहा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूँ, उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से।

0: पुकारता है कोई मुझे,
1: मुझे।
0: मैं फरियाद-दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो।
1: वाह,
2: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है,
3: जी
2: जो
3: जी
2: एक
3: जी
2: उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है।
3: बिल्कुल।
2: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरूह साहब हो तो फिर क्या कहना है।
3: क्या बात है।
2: अब मजरूह साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरूह साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और
3: समारंगीन, समझ गए ना।
2: हाँ, उसके बाद याद आ जाता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब का,
3: जी हाँ, जी हाँ।
2: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह के जो
3: क्या
2: गाने
3: रेंज,
2: हैं,
3: क्या रेंज,
2: क्या रेंज है, देखिए
3: वाह।
2: ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया था, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब। अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ।
3: IAS जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं, आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शागिर्द का, बड़े मियां दीवाने।
2: आप गाना सुनिए।

0: हमसे सुनो।
1: मजरूह साहब की कलम से निकला ये एक मजाहिया गीत और बहुत दिलचस्प गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। अमर जी अब
2: आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से।

पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है, तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया, जिसका नाम था जूली। सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कहीं।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

0: घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही हैं। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

0: पड़ेगा।
1: पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है।
5: नौराई माँ ची लाड़ा ची लाड़ा ची ग, आपड़ ही ला चंद्रा ची ग।
0: सन 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
6: तो

0: नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
2: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
3: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
2: ओहो,
3: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे मेरे हाथ में किधर है
2: जी।
3: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाईं सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत। अमर जी, तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे।
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ समय बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन।

ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स

0: प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉ एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी की लिखी इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत, पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: तनिया। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रिल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी

0: और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: आपको बतानी है बातें और जो आपकी लिखी हुई बातें हैं, आपकी खट्टी मीठी बातें हैं और विविध भारती की सुलहरियों पर झूमते गाते ये गीत जो आपके रेडियो सेट पर दस्तक लगभग दे चुके हैं। श्रोताओं, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हवाओं पे लिखे हवाओं के नाम ये गीत जो है जब छम से विविध भारती के जरिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। श्रोताओ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को नमस्कार, और आज की भारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेट रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नजदीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रियसी के नजदीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है, संगीतमय सफर संग प्रश्न पहेलियों का इंतजार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नजर नहीं आती, तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूर संचार की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खो सी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियां अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है, ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये जिंदगी का सफर, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और

श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो जरूर बताएं कि जब कोई नई चीज आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक जमाने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फोन किसको लगाया?

दास्तां कैसी भी हो, श्रोताओं, प्यार की हो, तलखियों की हो, गुस्से की हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था। कैफी आजमी की ये रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी। फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के बोलों को सुर में ढाला था हेमंत कुमार ने, और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की, वो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में प्यार की दास्तान तुम सुनो तो कहें, हमने सनम को खत लिखा, मेरे पिया गए रंगून, और तमाम ये गीत इन्होंने बताए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि रेडियो के इन जादुई तरंगों का सफर सिर्फ शब्दों और सुरों तक सीमित नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बातों का एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जो सरहदों के सारे नक्शे मिटा देता है। जब हवा में तैरती हुई कोई धुन किसी उदास दिल को छूती है तो तन्हाई के अंधेरे पल भी उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ये तरंगे सिर्फ आवाज नहीं पहुंचाती, बल्कि दूर बैठे अपनों की धड़कनों और उनकी मुस्कुराहटों को हमारे बेहद करीब लाती हैं। इस बेतार की दुनिया में ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही दूरियों का कोई डर, यहाँ तो बस सुरों की एक ऐसी महफिल सजती है जहाँ हर कोई बंधा चला आता है। सच ही तो है, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बदल जाए, लेकिन रेडियो तरंगों की लय पर बहती यादों की ये अनमोल विरासत हमेशा हमारे दिलों को इसी तरह गुदगुदाती रहेगी। वैसे रेडियो पर किस गीत का आपको इंतजार रहता है श्रोताओं, कि ये गीत बजे तो आपको बहुत अच्छा लगे, और किसी खास मौके पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं। वैसे न सिर्फ रेडियो की ही बात है, अगर हम दूरसंचार की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टेलीविजन है वो भी आ जाते हैं। कुछ एक नगमे हैं जिनमें से कुछ आज हमने लेने की कोशिश भी की है। तो टेलीविजन की क्या यादें हैं, यानी टीवी दूरदर्शन की क्या यादें हैं, ये आप हमसे बता सकते हैं। वैसे अगर आप बताना चाहें तो ग्रामोफोन की बातें भी बता सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते थे उनकी बातें भी बता सकते हैं, सीडीज की जो बातें हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हवाओं की तरंगों पर ही हमारे दिल के करीब आ जाती हैं। एक हमारे और श्रोता लिखती हैं, सुहाना सफर के कुछ शब्द और संभावित गाने, दूरी हवाओं पालकी परदेसियों, प्यार दास्तान देहरादून रंगून, गम उठाने ख्याल मन का नगर मतवाला, दूरी न रहे कोई, कुछ एक गीत इनके नहीं मिलते, बाकी तो लगभग सभी मिल ही रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा गीत आ जाता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज प्रोमो पोस्ट बहुत देर से आई, सुबह 3 बजे नींद खुली, तब से अब तक 5-6 बार पोस्ट ढूंढता रहा, अभी 7:30 के लगभग कामयाब हुआ। तो ये सुनकर ये जानकर भाई आपकी नींद खराब तो जरूर हुई नींद आपकी, लेकिन विविध भारती से आपका जुड़ाव इस बात को दर्शाता है, और आपने बड़े ही प्यार से ये बात हम तक लिख भेजी है। वैसे इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हमने सनम को खत लिखा, कभी बेख्याल होकर यूं ही छू लिया, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं, और इस गीत की क्या यादें हैं ये आप बताइए, किन पर फिल्माया गया है।

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई खत ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस खत का इंतजार है, या फिर इंतजार खत्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये खत नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतजार रहता है, न वो खत आता है न वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये जिंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है जहां कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामोफोन के सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामोफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज्यादा मैच नहीं करते हैं, तो इसके लिए तो ये जरूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्जाम देते थे, कॉलेज में एग्जाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो जरूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मजमून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफर में कुछ शब्द के गीत बज सकते हैं, जैसे दूरी हवाएं, परदेसी पालकी, रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नजदीक हैं परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा, इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं, और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाए। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर कि जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है, हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेलीकम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकार

यकीन मानिए श्रोताओ, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताजा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओ, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार जरूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्म आया गया, भारत भूषण भी नजर आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नजर नहीं आया है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डाक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिया का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मजा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मजा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं, ये बात जरा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी, और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थी वो थोड़ी देर से पहुंचती थी, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराजगी चल रही है, यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा तो बस मौका है, जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी जरा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं, तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो की सुर लहरियां केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामोफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्य में इबादत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता है वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था, कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं?
मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं, और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कानें, आवाजें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है, पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा के मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।

वो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जितेंद्र पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आंखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय है। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला वीबीएस के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे कोई, बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफर में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं। जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है, संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में अपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत

अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं। यही सब कारणों से हम सब किताब विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं, जब शाम में इतनी तेज नहीं भागती थी जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थी और इंतजार में भी एक मिठास होती थी। किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी खत बनकर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे। तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आंखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेशियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की कनों में पुरानी गलियां उतर आती थी। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

सुंदर सी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था, गूंज उठी शहनाई ये फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों न हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेशी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं। कभी यादें बनकर, कभी संदेश बनकर, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।

फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया। शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। शुरू की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं 1 बजे, सुरीला सफर की बागडोर संभाल रही हैं। इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो जरूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो, माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया। टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है

0: और गर्व का विषय है।
1: आई वर्क फ्रॉम अ बिजनेस काउंसिल।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
0: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
3: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
3: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
3: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
0: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: पूर्णिमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: बदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज।
1: प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

कपूर की आवाज़ में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत का। तो मनचाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं?

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और

और अभिजीत गवांडकर राही भी यहीं से, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवांडकर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और ज़िला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुया, देख तो वो मृगछौना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ, चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचा आए।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुया चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
1: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
0: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
1: तो फिर कब?
0: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे आधर पुष्प का रस मिल जाए।
1: क्या कर रहे हैं आप?
4: अरे चकली, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए,
0: ठीक है।
4: शकुंतला अब कैसी हो बेटी, शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा,
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
1: हाँ चलो माँ। चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी, और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है। उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
5: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए, यहां वेदी के चारों ओर

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है कुटिया में? कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसे तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले, तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जा जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है, उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
2: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, आकाशवाणी हुई।
3: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
2: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
2: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
2: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देख तो अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है।
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ,
3: माँ, प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो। अच्छा।

0: शीतला चली जाएगी। सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

0: शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।
1: प्रियंवदा, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
2: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो, उन्होंने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
1: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं। बाबा।
3: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
1: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो, आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या

0: सुया, मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
1: बेटी, तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे, ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
2: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे। जा, लौट जा।
3: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
1: हाँ शारंग्रह, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
4: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
1: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन, हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा, बाबा।
1: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख, पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
0: बाबा,
1: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
2: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा।
0: प्रिय बताओ, आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
2: सखी,
0: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
1: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
0: अनसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
1: इतनी अधीर रहो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
0: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
5: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
0: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
5: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
0: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
4: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
1: हाँ शरण करो, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए।

कन्या सचमुच पराया धन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर

0: कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों।
2: श्रोताओं अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
3: संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
3: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंस टेक पार्क के पहले चरण और ग्रमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300

0: से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। फाइनल में इस जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नाडो और डेनियल मॉर्थिन की जोड़ी ने 12-21, 23-25 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: की बात का थॉट था।
1: हाँ मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी वो, बन गई आइडिया वाइडिया, ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कोई। और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया। तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
0: जी जी,
1: सारी फिल्म में, त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ, कोई ऐसा वो। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
0: जी,
1: वो भी अमेरिका टूर किए। तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा, ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ, और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर। तो जो भी हो, आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डेटे भी जाएंगी, वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी। तो एक काम करो, तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम, मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
0: जी।
1: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
0: जी। हाँ। जी जी,
1: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है। तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है, और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
0: ओके ओके,
1: जो सब्जेक्ट सुनाया
0: जी,
1: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लें तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर, और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है। तो उन्होंने भी सुना, उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर, मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ
1: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त, उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उस तरह का।
0: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
1: रिस्की था
0: जी,
1: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
0: जी,
1: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था, हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर

0: और न्यूटन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी।
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है। और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा, बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग हैं, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला हाँ यार ये तो है, देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा, जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना।
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फला क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था।
1: पहली फिल्म थी आपकी?
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना बोले जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है यश जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं
1: बहुत
0: दूर
1: अच्छा,
0: निकल
1: बहुत
0: जाए।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कह रहे हैं। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यशजी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यशजी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिकर बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी चीज़ें कहा, ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तुम इससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छे गाने चले।
0: बहुत नहीं, फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था घर पर। वो कुछ हुआ था ऐसा, मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर,
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है
0: भाई? इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या मेरे साथ करो पिक्चर, एक एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को नहीं ऐसा बोलता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत से फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशन

0: जो एक आध सीन करके बैठते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छः महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
1: यस,
0: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊँगा, तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए। ऐसा कुछ हो गया था तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे। और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं, ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
1: वाह वाह,
0: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही।
0: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता था। गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
1: बाबा,
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है। उनका बेटा मैं, वो अजीब सा लग रहा है, डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग्स ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ। उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज़्यादा था आइडिया, मद्रासी फिल्म की तरह ज़्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं।
1: हाँ, ये कौन आए?
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके,
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका, उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा, सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूँगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फ़ोन करती हूँ। उन्होंने फ़ोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्क स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उस तरह मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे, पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो, लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया,
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं अब साफ प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है, और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया, सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पर, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया सुबह उनके फ्लैट पे, उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है।

0: आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना, फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था, 420 की, मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को,
1: जी जी जी,
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊँ लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया,
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके?
1: हाँ।
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह। हाँ। नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और सुबह कर। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूँगा तेरी, ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहाँ पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहाँ पहुँचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ होगी। और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू ये सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों, तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीज़ें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, आउट ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती हैं। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहाँ आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहाँ पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट ही करनी शुरू की।
0: हाँ।
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार।
0: हाँ।
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूँगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश पहल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता ऐसे नहीं, ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर बहुत सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर,
0: बाबा
1: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, ओए क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा? वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडी करके आया, ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कोनियाक पी, नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनियाक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनियाक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
0: अच्छा।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और इसी के साथ आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद, यानी कि 6 बजे।

केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 6 बज चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं रीनी स्वागत करती हूँ आज की दूसरी सभा में।

सभा शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की इस दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही समय में यानी कि 6:05 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे सबसे पहले कुछ मार आधुनिक गीत बुनरोनिंग इनबुन और उनके साथियों की आवाज़ में।

शाम 7:40 पर आप आनंद ले पाएंगे कार्बी कुकी आधुनिक गीत पेश करेंगे किजांगुल चोंगलोई और उनके साथी सुरु की रंगोली आप सुन पाएंगे 8:00।

8:30 पर आप सुन पाएंगे स्पोर्ट्स राउंड अप, पेश करेंगे विक्रम पांडे। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार रात 8:45 पर।

आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग आप सुन पाएंगे रात 9 बजे। और श्रोताओं, आज की आखिरी पेशकश रहेगी चित्रगीत कार्यक्रम रात 9:30 पर।

श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, बढ़ते हैं स्थानीय भाषाओं के

श्रोताओ, आप सुन रहे थे बुन रोनिंग इनबुन और उनके साथियों की आवाज़ में मार गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है मार कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

इसी आधुनिक गीत के साथ ही जैमी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आप सुनने जा रहे हैं संध्या आंचलिक बातुरी, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

0: गाना सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, अपना और अपने साथियों का नाम और इसे भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं डिमासा लोकगीत पी जलाल हाफ लॉन्ग बार और उनके साथियों की आवाज में।
2: হাইডাউলিং আরাই সিন দই হাইডিং নাই মজাং দেখে আদং খে দাবং দিং হরে মেনসা।

해마장 속에 아동키에 크나하동 무장소 하이다울링 야라신다에 하이댕랭이 하이댕 장댕 하이마장

0: Ay, camatiripani, ormiten.
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे डिमासा लोकगीत पी जलाल हाफलोंग बार और उनके साथियों की आवाज़ों में। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए आनंद लेते हैं कार्बी आधुनिक गीत का, शेडोवेल हैंसे और उनके साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्बी आधुनिक गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है कार्बी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब चलिए आरंभ करते हैं कुकी कार्यक्रम। सुनते हैं कीजांगुल चोंगलोई और उनके साथियों की आवाज़ में कुछ कुकी आधुनिक गीत।

श्रोताओं, इसी आधुनिक गीत के साथ ही कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम भी। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आइए आनंद लेते हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम का। आज पेश है मशहूर गायक कुणाल गांजावाला के सुपरहिट गाने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुरु की रंगोली के तहत मशहूर गायक कुणाल कांजावाला के कुछ सुपरहिट गाने। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे स्पोर्ट्स राउंड अप।
1: हेलो हाफ लॉन्ग, आप सभी के लिए ऑल इंडिया रेडियो हाफ लॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग। हर शनिवार और रविवार यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे को रात के 9 बजे। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।
0: ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। चलिए अभी आपको सुनवाते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, जिसे पेश करेंगे सिद्धार्थ पांडे और तृष्णा चक्रवर्ती।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट कृष्णा चक्रवर्ती और मैं हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम आपको देते हैं जानकारी हमारे जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो रहे खेल जगत की अपडेट्स। हर हफ्ते रविवार को रात के 8:30 से लेकर 8:45 तक प्रस्तुत होता है स्पोर्ट्स राउंडअप। चलिए अब आरंभ करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स। फुटबॉल में काराबाओ कप सेमीफाइनल में लिवरपूल ने टोटनहम हॉटस्पर के पहले चरण में 0-1 से हार का सामना किया है और न्यूकैसल यूनाइटेड और आर्सेनल के मैच में न्यूकैसल यूनाइटेड ने 2-0 से अपनी जीत हासिल की। FA कप तीसरे राउंड का मैच चल रहा है जिसमें फुलहम ने 4-1 से वेटफोर्ड पर जीत हासिल की। कार्डिफ सिटी ने 1-0 से शेफील्ड यूनाइटेड पर जीत हासिल की। नेशनल बास्केटबॉल राउंडअप में जियानिस एंटेटोकुनम्पो ने 44 पॉइंट्स बनाए जिसमें मिल्वॉकी बॉक्स ने सैन एंटोनियो स्पर्स को 125-121 से हराया। बॉस्टन सेलिटोक्स ने ह्यूस्टन रॉकेट्स को आसानी से हराया जिसमें डेरिक वाइट ने शानदार प्रदर्शन किया। मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स और डेट्रॉइट पिस्टन्स के बीच एक रोमांचक मैच हुआ जिसमें टिम्बरवॉल्व्स ने जीत हासिल की। क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी के प्री क्वार्टर फाइनल में राजस्थान और तमिलनाडु के मैच में अभिजीत तोमर की शतक की मदद से राजस्थान की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, 19 रनों से अपनी जीत हासिल की। SA20 के पहले मैच में MI केपटाउन और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप में MI केपटाउन ने 97 रन से जीत हासिल की। दिमाहसा में चल रही 7th असम प्रीमियर क्लब चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2024-25 जिसका फाइनल 16 जनवरी को होगा और दिमाहसा में जनवरी 7, 2025 से शुरू हुई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बागेटर गोरखा यूथ क्लब के द्वारा जिसका फाइनल्स हुआ 10 जनवरी को। दोस्तों चलिए ले चलते हैं आप सबको उस दिन की तरफ।
1: आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज के स्पोर्ट्स राउंड अप में हम बात करेंगे बैडमिंटन के बारे में। BGYC यानी कि बागेटर गोरखा यूथ क्लब ने बैडमिंटन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया था जो टूर्नामेंट ओपन फॉर ऑल था। यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया DSA के इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में और अभी अभी इस मैच का फाइनल खेला गया है और हमारे साथ इस मैच के विनर डबल्स के विनर हैं। चलिए उनसे पहले उनका नाम पूछ लेते हैं।
2: मेरा नाम है नथनियल एम्फलंग अमला है, मैं फेंगपू से हूँ।
3: जी मेरा नाम है डेनियल दामे और मैं भी फेंगपू से हूँ।
1: जी ये टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताइए आप और सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेडियो हाफलॉन्ग की ओर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डबल्स का ये टाइटल जीता है। कैसा फील हो रहा है और कुछ बताइए एक्सपीरियंस।
2: बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है लेकिन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खेल गए और हम लोग का तरफ से भी बहुत शुक्रिया है। और बैडमिंटन तो बचपन से खेल रहे हैं लेकिन हमारा हॉबी है और बैडमिंटन तो वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स है और आगे खेलते रहेगा और अच्छा लगा है।
1: आपका एक्सपीरियंस।
3: जी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो जिसने ऑर्गेनाइज किया है उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है और बहुत फेयर किया है। मैंने जितना तरह खेला है ये सबसे फेयर और मतलब अच्छा ऑर्गेनाइज किया है।
1: आप कब से बैडमिंटन खेल रहे हैं?
3: जी मेरा यहाँ पे हो गया 5 साल और आउटडोर पे खेल रहा हूँ 2 साल ऐसा हो गया।
1: और आपके ओपोनेंट कैसे थे आज, कितना कंपटीशन कैसा रहा?
3: आज का हम लोग का फाइनलिस्ट था नेक टू नेक टाई जैसा था। हम लोग का सेकेंड सेट का तो वो लोग यूज़ किया तक किया था हम लोग का, लेकिन हम लोग हार नहीं माना दिल में ज़रूर जीतेंगे बोल के जीत गया।
1: आप क्या मानते हैं कि बैडमिंटन से आपका जो एक फिजिकल फिटनेस इसको मेंटेन रखने में कितना हेल्प करता है?
2: हम सुना गूगल में भी हम देखा बैडमिंटन खेलने में 40% तो लाइफ स्पेन करता है, लाइफ स्पेन करने आगे बहुत जीने के लिए बहुत देते हैं और फिजिकल फिटनेस तो अच्छा डाइट खाना ज़रूरी है और एक्सरसाइज हर दिन लेना ज़रूरी है और बैडमिंटन के लिए इतना देखने में आसान नहीं लगता है, लेकिन करने में बहुत तकलीफ है। और अगर खेलने चाहते हो तो सब लोग, आप लोग भी ज़रूर आइए जैसे इंदौर स्टेडियम में भी।
1: और आप दोनों जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है BGYC क्लब द्वारा, उनको क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत शुक्रिया है, लोग अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बहुत फेयर गेम प्ले है और हम लोग भी बहुत सपोर्टिव है, हम लोग को बहुत सपोर्ट दिया है और हम लोग को आगे भी अच्छा ऐसे गेम खेलने के लिए हम लोग को, हम लोग तो तरफ भी सपोर्ट दिया है
1: जी। और ये अगर बहुत सारा यूथ हमारा अलग अलग रास्ते में जा रहा है, ड्रग वगैरह ये सब सुनते हैं, तो वो सब उस तरफ ना जाके स्पोर्ट्स में आने से अपना फिजिकल फिटनेस के लिए भी फ़ायदा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगा बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन इज़ अ वेरी अंडररेटेड गेम इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, बट इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट इन दिस गेम। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द यूथ टू प्लीज़ कम एंड जॉइन अस हियर every day, every evening, and enjoy with us.
1: Thank you again, or again, congratulations.
0: चलिए अब बातें करते हैं BGYC के एग्जीक्यूटिव मेंबर अरविंद साई जी के साथ। जी, आप आज का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए।
4: ऐसे ग्रेटर हाफलोंग में जितने बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनको यूजली इतना खेलने के लिए वो लोग मौका नहीं मिलता है, या तो यहाँ पे एक गांव के अंदर में ही एक लिमिटेड एक टूर्नामेंट होता है जो वो गांव के प्लेयर्स ही खेलते हैं। इस ये टूर्नामेंट करने के टाइम हम लोग का यही था कि पूरे ग्रेटर हाफलोंग में जितने बैडमिंटन प्लेयर्स है और काफ़ी अच्छे अच्छे भी है
0: जी,
4: तो वो लोग आए खेले, अपनी प्रतिभा दिखाए, टैलेंट दिखाए, यही था हम लोग का
0: जी। स्पोर्ट्स खेलना कितना ज़रूरी है?
4: बहुत ज़रूरी है
0: जी।
4: इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर बिल्डअप करता है, आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है
0: जी। जी, स्पोर्ट्स खेलने से फिजिकली इंसान फिट रहता है, मेंटली कितना फिट रहता है?
4: मेंटली भी हाँ, जितना फिजिकली होता है मुझे लगता मेंटली भी उतना ही होता है। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, स्पेशली विद रैकेट स्पोर्ट्स, जो आप टेबल टेनिस बोलिए, बैडमिंटन बोलिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपका मोटर रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छा हो जाता है
0: जी।
4: आप लेजी नहीं होते, एक्टिव हो जाते हैं मेंटली फिजिकली
0: जी।
4: आपको डिस्ट्रेस नहीं होता किसी कारण का, या सम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में हो अगर आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, नॉट नेसेसरीली बैडमिंटन ही बोलूँगा, या कुछ भी स्पोर्ट्स, कुछ भी एक्टिविटी, आपको मेंटल हेल्थ जो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम है अभी का टाइम पे, जो जैसा स्ट्रेस लाइफ है ये 21st सेंचुरी को, इसको टैकल करने में बहुत हेल्प करता है स्पोर्ट्स
0: जी। बहुत ही अच्छी बातें कही हैं आपने जी। जैसे कि आपने बताया कि ये खेल इस माध्यम के लिए है कि ताकि जो यूथ है वो किस तरीके से ड्रग एडिक्शन पे जा रहा है उस चीज़ पे ना जाए, इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं, युवा काफ़ी जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: उनको कहना चाहता हूँ कि खेलिए, आपका इनर चाइल्ड को लेके आइए, आपको बचपन में आप कौन सा गेम पसंद करते थे
0: जी,
4: उसे आप एक्सप्लोर करिए, फिर से खेलिए, और खेलना चाहिए, खेलना बहुत अच्छा चीज़ है
0: जी।
4: और अभी विथ स्पोर्ट्स, पहले ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऐसा था पहले का इंसान लोग का, सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करेगा तो ही इंसान बनेगा, वैसा नहीं है, अभी ज़माना चेंज हो रहा है। एडुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर आप अच्छे खेलेंगे तो आप बाहर भी खेल सकते हैं, आपका करियर बिल्डअप कर सकते हैं
0: जी,
4: तो वही कहना चाहता हूँ
0: जी। आप लोग BGYC से ये टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो ये आप आगे कहाँ तक लेके जाने का सोच रहे हैं?
4: आगे हम लोग का प्लान्स भी और भी है
0: जी।
4: अगर ऐसे ही युवा लोग का हम लोग को सपोर्ट रहता रहेगा तो हम लोग आगे भी बहुत कुछ सोचे हैं
0: जी। कुछ एडवाइस जो हमारे युवाओं को आप देना चाहें?
4: फिलहाल तो अभी हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ खेल का ही चल रहा है
0: जी।
4: और एडवाइस तो यही देना चाहता हूँ कि खेलते रहिए, और ये मेरे ये इंटरव्यू के माध्यम से जितने भी प्लेयर सुन रहे हैं मुझे, उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को इंटरेस्ट है गेम्स में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फॉर एग्जांपल अभी कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको बैडमिंटन में इंटरेस्ट है तो आइए DSA में ज्वाइन करिए, खेलिए, यहाँ शाम को आते हैं, इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, सिखाएंगे आपको ये गेम के बारे में सिखाएंगे, या आपको शाम को, या फुटबॉल भी होता है, फुटबॉल खेलने आइए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं मैच ऑफिशियल से रोजर एल बियती जी से स्वागत करते हैं उनका।
5: थैंक यू
0: जी। आज ये खेल चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
5: हाँ, ये मैच एस एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा गया हमारे खेल में
0: जी।
5: कुछ चीज़ें ठीक करने को तो है लेकिन एट दिस पॉइंट सब अच्छा चल रहा है। या एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट
0: जी। क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं?
5: यस, आई प्ले बैडमिंटन। अभी का टूर्नामेंट में तो हमने घुसा। आई रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट
0: जी। जैसे कि आपने कहा कि आपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए।
5: डिस्ट्रिक्ट का नाम से जब रिप्रेजेंट करने गया तब अच्छा प्लेयर था जो डिस्ट्रिक्ट का नाम से खेलता है
0: जी।
5: मैच भी अच्छा गया लेकिन एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट आर फार मोर बेटर। सो या आई थिंक इवन वी हैव टू ट्रेन अ लॉट in order to defeat the other district players as well.
0: जी, आप मैच ऑफिशियल हैं तो आप इस टूर्नामेंट को किस तरीके से ऑफिशिएट करते हैं?
5: हम अंपायर हैं और पॉइंट्स गिनती करता है 1, 2, 3। इस टूर्नामेंट में तो सिर्फ वही है मेरा काम जो हमको सौंपा गया है, पॉइंट्स का गिनती करना और लाइंस सब सब कुछ देख के अच्छा से खेल को थ्रू करना
0: जी। हाँ, जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पे मैच चल रहा है, जो युवा है वो कुछ लोग ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे?
5: I like to tell them that badminton is a great sport. Come play for physical fitness. Physical fitness के लिए भी अच्छा है, ड्रग्स वर्क्स करके कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए if you have developed interest in badminton, so that it will help your physical and mental ability.
0: जी, आपने बताया आप बैडमिंटन खेलते हैं, आपका बैडमिंटन का जर्नी ज़रा शेयर कीजिए।
5: मेरा बैडमिंटन का जर्नी 2014 से शुरू हुआ था शिलोंग में। स्टेट प्लेयर्स लोग हमको सिखाया बहुत अच्छा से, इसके बाद में हम इम्प्रूव होके आया और डिस्ट्रिक्ट का नाम रिप्रेजेंट करा। और हाँ, यहाँ में हाफलोंग में खेलते खेलते जीते रहता बोल के हमको उतना टूर्नामेंट्स में अलाउ नहीं करता है अभी। हाँ, अंपायरिंग करता है, पॉइंट्स गिनती करता है। एंड इफ देर इज टूर्नामेंट इन गुवाहाटी एंड ऑल, या वी यूज्ड टू गो। और बेलटोला टू सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट टूर्नामेंट होगा गुवाहाटी में। फर्स्ट 6 माइल का होगा और बेलटोला का बोला टू सेकेंड होगा। तब हम और मेरा पार्टनर अर्नब जो करीमगंज का डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है उसका साथ गया था और क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचा हम लोग। और सेमीफाइनल्स पहुंचने के लिए 1 पॉइंट से हार गया
0: जी।
5: हम आउट मार दिया स्मैश इसलिए
0: जी। आपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, तो आप बैडमिंटन को लेकर आगे क्या सोचते हैं?
5: मेरा टाइम तो खत्म हो गया बैडमिंटन को लेके। अभी तो जो अपकमिंग युवा है वो लोग को हम एनकरेज करने मांगता
0: जी
5: कि स्पोर्ट्स में घुसो और अच्छा से खेलने की कोशिश करो ताकि बाद में आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर पाए, स्टेट भी रिप्रेजेंट कर पाए
0: जी। स्पोर्ट्स खेलना एक युवा के लिए कितना जरूरी है?
5: इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पोर्ट्स। नहीं तो और एल्स इफ यू आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स, योगा भी कर सकते हो, एनी फिजिकल एक्टिविटी इज गुड फॉर ह्यूमन लाइफ।
6: आचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडविटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोसन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ

0: स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व विदाई दी, ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आपने सुने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए समाचार संध्या। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग, जिसे प्रस्तुत करेंगे अर्पिता बोडो।

0: हेलो हाफलॉन्ग, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलॉन्ग का इस हफ्ते का दूसरा एपिसोड। आशा करती हूँ आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग बहुत ही पसंद आता होगा। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हमें कॉल करके आप कोई भी अपना मन पसंद फिल्मी गाना सुन सकते हैं और साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली और चाहने वालों को डेडिकेट भी कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग का हेलो हाफलॉन्ग प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमें कॉल करके, और आप सभी चाहने वालों के कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। तो आइए जानते हैं आज के दूसरे एपिसोड के पहले कॉलर कौन है। हेलो हाफलॉन्ग
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: जी, मैं राजेश कुमार जसापुर से बोल रहा हूँ। फिल्म का नाम है ये सिलसिला है प्यार का।
0: जी,
1: ये गाना सुना दीजिए। मैं
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत, और हेलो हाफलॉन्ग में हमें कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम, नमस्कार।

0: हेलो हाफलोंग,
1: नमस्कार। धीरज
0: नमस्ते। आपका नाम?
1: व्यापारी बात कर रहा हूँ,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गांव देर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरज वी रबारी।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी आप लोगों का जो आप फोन इन कार्यक्रम आता है शनिवार रविवार सुनता हूँ। आपकी प्रस्तुति लाजवाब होती है और सुनने का मन बार बार करता है
0: जी,
1: लेकिन सप्ताह में दो ही बार आता है तो दो ही बार सुनते हैं
0: जी तो आज आपकी फरमाइश क्या है ये बताइए, आपको हम कौन सा गाना सुनवाए?
1: अखियों के झरोखों से फिल्म का नाम है और गाने के बोल शीर्षक गाना है, टाइटल सॉन्ग है, हेमलता की आवाज में। और कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप परमिशन दो तो।
0: जी बताइए।
1: हमारे जो श्रोता बंधु है जो पक्षियों के लिए, मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए जो पानी की व्यवस्था की है तो उनको आपके जरिए से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हो सके इस गर्मी, भीषण गर्मी चल रही है यहाँ गुजरात में, आसाम में, तो हो सके तो 12 से शाम 4 बजे तक कहीं बाहर ना जाए।
0: जी,
1: और बुजुर्ग जो बूढ़े लोग है
0: जी,
1: उनको और बच्चों का ख्याल करना चाहिए दीदी।
0: जी बहुत ही अच्छी बात कही है आपने।
1: जी, हमारा आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप है जिसमें है हमारे लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम रायकोली जी, तुकाराम जी है, गंगाधर सावंत जी के, दिलीप आहूजा जी है, फिर योगेंद्र जी है जो छत्तीसगढ़ के ग्रुप से, सो बहुत सारे श्रोता है जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और हम आपके कार्यक्रम की सूचना भी हमारे फोन इन ग्रुप में देते हैं दीदी।

0: हेलो हाफलोंग
1: हेलो दीदी,
0: जी, आपका नाम? कहाँ
1: मेरा नाम एकलास दीदी।
0: से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं आकाश चिरुंगा से।
0: क्या करते हैं आप ये बताइए।
1: मैं कट मिस्त्री कुन्ना है और एफएम रेडियो ठीक कुन्ना है दीदी।
0: आज आपने हमें हेलो हाफलोंग में कॉल किया है, आपकी फरमाइश क्या है? आपको हम कौन सा गाना सुनवाए?
1: एक कुमार सानू का आशिकी का फर्स्ट गाना टू आशिकी के लिए एक गाना है दीदी।
0: आशिकी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत। और हेलो हाफलोंग में हमें कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।

0: हेलो हाफलोंग।
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आपका
1: हेलो,
0: नाम?
1: प्रदीप पाल, आप लोग बाजार से? मैडम
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो आप बिजनेस करता हूँ।
0: जी, रेडियो कितना सुनते हैं?
1: 10 साल 10-12 साल हो गया हम सुनते हैं, अपने साथी लोगों भी सुनता है।
0: जी, आकाशवाणी हाफलोंग का कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद है ये बताइए।
1: कार्यक्रम अच्छा लगता है, तो सब समझ नहीं पाता ना।
0: जी,
1: तो अच्छा मिलता है।
0: आज आपने हमें कॉल किया है, आपको हम कौन सा गाना सुनवाए आपकी फरमाइश जानना चाहूंगी।
1: नोरी फिल्म का
0: जी
1: अच्छा सुनाई दीजिए।
0: जी हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के पसंद पर फिल्म नूरी से ये गीत। और हेलो हाफलोंग में हमें कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो हाफलोंग
1: हेलो, आप
0: जी, आपका नाम? कहाँ
1: लोग? मैं
0: से बात कर रहे हैं आप?
1: रमजान जी बोल रहा हूँ। मैं
0: जी, आज आपने हमें कॉल किया है हेलो हाफलोंग में। आपको हम कौन सा गाना सुनवाए?
1: प्यार भरा दिल, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। अब मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ सबसे पहले आप
0: जी
1: और मेरा भाई जिसे
0: जी
1: मैं और बोरो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: और है।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत। और हेलो हाफलोंग में हमें कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

डियर लिसनर्स, इस हफ्ते के हेलो हाफलॉन्ग प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। जिन दोस्तों ने आज इस कार्यक्रम में कॉल किया, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9435700596। नंबर एक बार फिर 9435700596। आप हमें कॉल कर सकते हैं हर बुधवार यानी एवरी वेडनेसडे को, समय रहेगा दिन के 1 से 2 बजे तक का। कॉल करना बिल्कुल भी ना भूले। अब आज के लिए मुझे अर्पिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही SMS प्रोग्राम आपके हेलो हाफ लॉन्ग यहीं पर समाप्त होता है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है और अब पेश है चित्र गीत कार्यक्रम।

హలో 9821026212 బిపిఎల్ అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్ చే యార్ జి

नितिन मुकेश के आवाज़ में आपने सुना ये गाना। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज़ अनुराधा परवाल के आवाज़ में ये अगला गीत।

इसी गीत के साथ ही आज का चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बज चुके हैं। कल सुबह पहली सभा के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपसे मिलने। इसी के साथ मैं रिनी लेती हूँ आपसे इजाज़त। शुभरात्रि। जय हिंद।